गुरु नानक सच्चे पातशाह कलयुग दे महान अवतार उन्हां दी वड्याई भाई साहब भाई गुरदास जी सिख धर्म दे महान विद्वान उन्हां ने अपनी कलम नाल कीती है। बड़ा सुंदर ए प्रसंग गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी सिद्धा नाल ज्ञान चर्चा विचारधारा गोष्ट जिथे भी कोई रब तू भुलिया इंसान गुरु नानक बाबा नू नजर आया सतगुरु उथे आप पुजे। संसार दी रीति है भई महापुरश वली पीर पैगंबर उन्हां कोल दुनिया जांदी है पर गुरु नानक सच्चा पातशाह आप लोगां कोल जांदे रहे। बाबा काशी गए बनारस गए हरिद्वार गए गया जी गए क्यों गए भई लोगां दा तीर्थां ते इकट्ठ हुंदा सी ते बाबा जी उथे अपने विचार सुणांदे सी लोगां नूं सीधे मार्ग ते लांदे सन। बटाले दे लागे बिल्कुल नजदीक क्योंकि बटाले विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सौरा परिवार सी ते लागे अचल बटाला है ओ सिद्धां दा बहुत वड्डा गढ़ शिवरात्रि दा मेला लगा होया सी ते गुरु नानक ने सुनहरी मौका तकिया कहण लगे मर्दानिया चल गरीब नवाज पातशाह सत वचन। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने

के घर मंगन जाई, विनती ते किच हाथ न आई। ए सुन बचन जुगीसरा, पैसा कहने हूं झगड़ा कर लगे ने, गुरु नानक नु डराउन लगे ने, अपनी शक्तियां दा प्रभाव पाती।

कर करके उड़न पंखी। भाई साहब कहने में कोई उड़न वाला पंछी बन रहा है, कोई बघियाड़ बन रहा है, कोई चीता बन रहा है, कोई शेर बन रहा है। एक पर कर करके उड़न पंखी, एक पर करके

आसरा गुरु की संगत दा बाणी दा उस निरंकार वाहेगुरु दा आसरा। शिव रूपी करता पुरुष चले नाही धरत चलाई, सिद्ध तंत्र मंत्र कर चढ़ पे। रिधियां सिद्धियां दे मालक बने बैठे सन, गुरु नानक नु डरा रहे सन। भाई गुरदास कह रहे हैं, सिद्ध तंत्र

फरीद जी दे पास एक महात्मा आया करदे सन। रोज जाके उना दी सत संगत विखे सेवा आदि कीता करदे सन। देव नेत नाल एक दिन बरखा होण करके गलियां विखे चिक्कड़ बहुत हो गया। पहले तो ना जान दा संकल्प कीता कि कपड़े भिज जाणगे, पर प्रेम दा नेम टुटदा वेख के आप दे मन विच

सर्दियां दे दिन हन, फरीद जी बैठे हन रब दे प्यार विच जुड़े होए, ता आकाश बाणी होई हे फकीर एवें जमीन पर लेट के क्यों दुख पा रहे हैं। मंजा लेफ तुलाई कुछ कपड़े नाल ले लै क्योंकि सर्दी दे दिन हन, ते नाले सिमरन कर नाले सुख पो, ता बाबा फरीद जी रब दे रंग विच रते होए, जिन्हां दे हिरदे विच शिक सी साईं दे मिलन दी। ए गल सुन के फरीद जी कहंदे ने हे वाहिगुरु, मेरे पास खटोला भी है, लेप भी है, कपड़े भी हन। आख्या केड़े कपड़े हन, केड़ा खटोला है तां

हिरदा हिरदा नहीं। जिस हिरदे विच साईं दे मिलन दी शिक नहीं आवसी, आख्या ओ हिरदा, ओ हिरदा तां शमशान भूमिका है। उस हिरदे विच तां भूत प्रेत वस रहे हन, जिथे साईं दे मिलन दी शिक नहीं आवसी। जेड़ा सिर गुरु दे अगे नहीं चुकिया, ओ सिर कादा होया। जो सिर साईं नानवें, सो सिर दीजे डार। आख्या नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं, सो पिंजर ले जार। ऐसे हिरदे नू जला दे, ऐसे शरीर नू छाड़ के सुआ कर दे, जिस शरीर विच वाहिगुरु दे मिलन दी सिक नहीं आवसी। क्योंकि ए सुल्तान भगती है बैराग, मालक दे याद विच जुड़ के भजन विच जुड़ना, सिमरन करना, ए सुल्तान भगती।

रजिया कोई मरना चाहुंदा, पर कबीर जी कहंदे हन जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। ओ मौत नू आनंद क्यों कह रहे हन भाई, जिन्हां ने बाजी जीती जो पुग गए, जो कुछ करना सी संसार ते आके कीता, फिर उना दा आना जाना सफल है, गुरमुख आए जाए निशंग। इसलिए जे सौ वरिया जीवना आख्या, जे सैकड़े वरे भी कोई जी लवे, अंत नू तां भाई ए पांच भौतिक शरीर ते अग

कि काल जो है ए मौत रूपी कुहाड़े नू हर वेले चुक के हर मनुख दे नाल है। परमेश्वर दे हुक्म अनुसार ए जीव आत्मा नू ले जांदा है। फरीद जी कथन कर दिया न, मैं ता अपने पति खुदा दी प्राप्ति नू चाहुंदा हां, ते तू मेरे अंगियार औगणा नू वेखना चाहुंदा है। इस दे विच कोई औगण होवे ता मैं इस नू फड़ के लै जावां, कदों इस दे श्वास समाप्त होण ते मैं इस नू लै जावां। तो फरीद जी अपने प्यार विच रंगे होए उस लोहार नू कह रहे हन, भाई तू अंगियार नू लोड़ रहे हैं जंगलां विच, असी रब नू लभ रहे हां। कंध कुहाड़ा सिर

धन गुरु तेग बहादुर सोच लै भाई धार लै अपने मन विच इसनो धार लै मतलब वसा लै मन विच सिर्फ चार दिनां दी गल है बंदा नाल तकबर भरिया कूड़े करदा माने मैं हां चतर सियाणा सुंदर शेर आप नू जाने आकड़ आकड़ चले किसे दे नख तले नहीं आने साई लोका जद फूका निकले आवे होश ठकाने ए बंदा जिन्ना मर्जी मान कर लवे पर उदो तक है जदो सब कुछ ठीक है जदो थोड़ी भी चीज गलत हो जावे कहता जी मैं बड़ा तकड़ा हां बलवान हां पर एक दिन मंजे ते पै जे निढाल हो जाता है। धन गुरु तेग बहादुर मसालो अपने मन में राग सिंधी

प्रहलाद जब तुझ राख ले हर जियो हर नाक शुमार बजाया गुरमुखान प्रतीत है हर जियो मन मुख भरम भुलाया हर जी।

है जो गुरु रूप से जो लोगों में पोषण आदमी पैदा कर रहे हैं फिर की संस्मृति है जन्म चलो मारे जो भी मिटे भाव जब भी है सारे ज्ञान से सर्व

0: से अर्थ सत तीर्थ परस किए, जैसे अर्थ सत तीर्थ परस किए, युग चार चलो कैलाश
1: जिना गुरमुखां दे कदम सत संगत वाले चल के जाते हैं। किड्डा वड्डा महात्म भाई साहब भाई गुरदास जी ने दसिया है कि जो गुरमुख जन सत संगत विच बह के जपते हैं सतनाम, संगत विच बैठ के वाहेगुरु जपन का किड्डा वड्डा महात्म है, पर एक शर्त है कि जपे गुरु चरणा दे नाल मन नूं जोड़े। जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए, युग चार चढ़ो कैलाश रहो, जैसे कोट जन्म तप

0: धर्मपुर एक पहला जाए जल सतगुर कोट पहना आगे हुए लेत है।
1: तुम एक कदम सतसंगत वाले चलना है ते गुरु तैनू करोड़ा कदमा अगो लैण आए। ऐसा गुरु क्यों ना ऐसे गुरु दे बलिहार सच्ची आके किना कदमा ते लैण आउंदा है कदों गुरु लैण आउंदा है। साहिब बाणी विच इसका हवाला दे रहे कि जह मार्ग के गने जाए ना कोसा हर का नाम संगत। तू गुरु वल एक कदम रखता है गुरु तैनू करोड़ा कदमा अगो लैण लई आ रहा है। क्यों ये मेरा है ये मेरे पासे आ रहा है। इसे लई साहिब बाणी विच कहंदे हन कि मित्र उस नू बना ओ तेरा सच्चा मित्र है जेड़ा एथे भी ते दरगाह विच भी आके भाई ए मेरा है भाई इस दा हिसाब मेरे पासों दा। सज्जन सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े। ऐसा मित्र कौन है प्यार नाल आपको धन गुरु गोविंद। एक पिता एक सके हम बारिक तू मेरा ऐसे गुरु तो सदके जाए ऐसे गुरु तो बलिहार जाए। ये शब्द जो आप सरवण कर रहे हो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का ये शब्द है। पर जोत
2: काहे को दौलत है तुमरी सुध सुंदर सिरे पदमा पतला है। And it's that same message. Why are you wandering? Your husband Lord is so beautiful. God has no lust, no anger, no greed, or worldly attachment. No illness. No fear. God has no body, but he bears love for all. And his love is without condition. He is without home and cannot be destroyed. God gives to those who know it and to those who don't. He gives the earth, he gives the heavens.

उत्तम जागन है जे तू प्रभु भक्ति करे, जे उस मालक दा नाम जपे, जे उस मालक दे चरणा विच जुड़ के जपे श्री वाहिगुरु। जागना जागन नीका, सारियां जागना विचों उत्तम जागन केड़ा है, हर कीर्तन में जागना। जागरण करना है उस मालक दी भाई, सिफत सलाह कर, ओदे गुण गा, ओदा कीर्तन करेगा, तेरा लोक परलोक।

तो विछड़ गया पटक गया ता फिर तेरी बांह फड़न वाला कोई नहीं होवेगा। जदों कोई गुरु दे चरणा तो बेमुख हो जांदा उदी हालत हो जांदी है जिस तरह अक दा तूंबा अक दे नालों विछड़िया ते फिर हवा दे बुलियां विच धक्के खांदा फिरदा किते टिकदा नहीं, जिधर दी हवा है उधर ही भजिया फिरदा। इस तरह मन अशांत और दुखी हो जांदा जेड़े गुरु नालों टुट

देश है परदेश है तेरा शरीर भावे कितनी भी दूर बैठा होवे पर तेरा मन गुरु दे चरणा विच होवे तेरा मन गुरु दे चरणा विच जुड़िया रहे ए उत्तम मंग है कहो नानक तिस सब

तान गुरु नानक पातशाह इस शब्द विच अकाल पुरख वाहेगुरु दे चरणा विच अरदास कर रहे हन। हे निरंकार आप सरबग हो असी अलपग जीव हां, आप निरंकार हो असी भुलनहार, असी कूड यार जो भी बचन करदे आ उस नाल कूड दी लब लगी होंदी है। आप दा नाम सदा सच है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। असी गुनाहगार हार हार भुलन हार हां, इसलिए संसार ते आके जो कुछ करना सी ओ कुछ कीता नहीं। तेरे दर ते ता जपन वालियां दी इज्जत है सत्कार है, पर असी तो केवल तेरी बख्शिश लोड़दे हां। कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई चंगा कर्म नहीं, कुड़ियार असी कुड़ियार हां, क्योंकि नाम ना पाया।